0: जो ड्रामा है दशारंग, और दूसरा जो है आपने आप दे रही हैं कुटुंब।
1: कुटुंब उत्सव ये टिकटेड इवेंट है, लेकिन इसके दो फ्री टिकट जो हैं वो हम देंगे
0: तो
1: पहले।
0: अभी एक विनर नहीं, दो विनर होंगे
1: दो
0: क्या?
1: विनर हम चूज
0: अच्छा।
1: करेंगे, और ये भी दो टिकट मिलेंगे जो भी जीतेगा। तो लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाइए और रजिस्टर कीजिए। प्रोग्राम 5 से 8 बजे है, बहुत ही सुंदर रंगारंग कार्यक्रम है, जरूर इससे जुड़िए। श्रोताओं, ये भी बताना चाहती थी कि आज जो है हम महेश भट्ट जी की भी बात कर रहे हैं, और बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिवस है। और महेश भट्ट को हम सब जानते हैं, उनकी सभी फिल्में जो हैं हम कितनी पसंद करते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आज के दिन 1948, 20 सितंबर 1948 में महेश भट्ट जी का जन्म हुआ था। ये निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं। अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क, जख्म, नाम अलग अलग हैं, कहानियाँ अलग अलग हैं, लेकिन महेश भट्ट के सिनेमा में एक चीज़ बार बार दिखाई देती है, वो है इंसान की अंदरूनी दुनिया। उनके जन्मदिन पर आज सभी गीत उन्हीं को समर्पित हैं। जानते हैं कि महेश भट्ट के बारे में कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें जो हर सिनेमा प्रेमी को मालूम नहीं होंगी। इनकी पहली अनोखी बात यह है कि वो हमेशा अपने तकिए के नीचे गणेश जी की एक मूर्ति रखते थे। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई। और ये भी बता दें कि उनका नाम महेश क्यों पड़ा। उनके उनकी माँ जो है वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड से थी, और उनके पिता जो थे वो शिव भक्त थे, तो वो शिव के ही नाम पे उन्होंने महेश नाम रखा इनका। लेकिन छोटे से महेश जी को जो है वो शिव से ज़्यादा गणेश जी पसंद थे, इतना कि वो बचपन में अपने तकिए के नीचे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रख कर सोते थे। और इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प थी, जो कि मैंने आपको बताया कि वो हमेशा गणेश जी को अपने करीब महसूस करते थे, और अपने पिता की तुलना में वो अपनी माँ से ज़्यादा करीब थे। उनके पिता फिल्मकार नाना भाई भट्ट उनके बचपन में उनके साथ नियमित रूप से मौजूद नहीं रहते थे, बाहर ज़्यादा रहते थे, और शायद यही कारण था कि वो पिता की अनुपस्थिति उनके सिनेमा का एक रीअकरिंग थीम बन गई। उनकी सभी मूवीज़ में आप देखिए, पिता से जुड़ी कहानी जरूर रहेगी कि पिता जो हैं वो थोड़ा अलग हैं या डिस्टेंस हैं, यानी कि एक बात को जो बच्चा महसूस कर रहा है वो बाद में एक फिल्मकार की भाषा बन गई। दूसरी एक ज़रूरी बात इनके जीवन की ये है कि रिश्तों में टूटन, प्यार, विश्वासघात, अकेलापन और एक महिला का खुद को फिर से खड़ा करना, ये भी उनकी निजी जीवन की कहानी से ही प्रभावित है। ये काल्पनिक कहानी नहीं है, अपनी निजी ज़िंदगी में भी उन्होंने महसूस किया वो माँ के ज़्यादा करीब थे। माँ ने ही एक तरह से उनको पाला और पिता हमेशा दूर ही रहे। तो माँ स्त्री प्रधान मूवी ये बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में, आगे भी हम चर्चा करेंगे अगर समय मिला। तो सुनते हैं एक और महेश भट्ट जी का ही गीत, सुंदर सा।

0: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accounts and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention The Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095 9405, that's 8095 9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of The Open Radio.
1: श्रोताओं, आइए आपको मिलाते हैं हमारे दूसरे अतिथि थे। आज हमारे साथ हैं नंदन मुखरिया जी, जिन्हें बच्चे प्यार से मिस नैन के नाम से जानते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के क्षेत्र में उन्हें 24 वर्षों का शानदार अनुभव है। एक एजुकेटर के रूप में शुरू हुआ उनका सफ़र आज पैशन, पर्पस और बच्चों के प्रति समर्पण की पहचान बन चुका है। आज वो अपना अर्ली चाइल्डहुड सेंटर चला रही हैं, जहां बच्चों और परिवारों के साथ उनका गहरा जुड़ाव है। हाल में ही उन्हें प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। उनके 24 वर्षों की मेहनत और समर्पण को एक ख़ास पहचान दी है। नंदन जी, दर्पण हिंदी रेडियो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला और टोटली हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं श्रोतागण, तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन।
2: थैंक यू ऋचा जी एंड सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया।
1: तो सबसे पहले अपने बारे में श्रोताओं को बताइए, भारत में आप कहाँ से हैं, कब आना हुआ ऑस्ट्रेलिया?
2: उसके पहले मैं गणपति जी के लिए
1: जी जी श्रोताओं ये मैं
2: बोलना चाहूँगी
1: जी, मैं बताना भूल गई कि नैन जी बहुत ही सुंदर गाती हैं, बहुत मधुर आवाज़ है, तो क्यों ना शुरुआत उसी से हो।
2: श्लोक बोलना चाहूँगी
1: जी।
2: वक्त

0: गम्वाचा सिद्धाय नमः गममोघ सिद्धाय नमः गमहिरम्बाय नमः गमधरणीधराय नमः गमचिन्तामणे नमः गमनन्दनाय नमः गमशिप्रसादाय नमः गमसुमङ्गलाय नमः गममहागणेशाय नमः गमलक्ष्प्रदाय नमः गमाशापूर्काय नमः गममविताय नमः गमवरदाय नमः गमबीजाय नमः गममन्त्राय नमः गमशिवाये नमः गमनिधये नमः गमजुण्डीविनाकाय नमः गणपति बप्पा
1: मोरिया। बहुत ही सुंदर बात और बहुत अच्छे से आपने कार्यक्रम की शुरुआत की। तो चलिए अब अपने आप को मिलाइए श्रोतागण से, बताइए भारत में आप कहाँ से हैं।
0: हाँ ऋचा जी, मेरा नाम नंदन मुखरिया है। जैसा आपने पहले बताया कि बच्चे मुझे प्यार से नैन कहते हैं, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश के पास भोपाल के पास एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है हरदा। वो हरदा से मैं बिलोंग करती हूँ
1: जी।
0: और 30 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए हुए। मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली चाइल्डहुड ने मुझे चुना है। जैसे बोलते हैं ना, मुझे शुरू से ही बच्चों से काफ़ी प्यार था
1: जी।
0: और कहते हैं जाकी बही रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान ने फिर मुझे रास्ता दिखाया, तो मैंने अपनी जर्नी एज ए एजुकेटर चूज़ की। आपको पता ही है कि कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बट मेरे पास एक जुनून था, एक पैशन था अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए और बच्चों की लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। सो मैं भगवान ने मुझे मौका दिया और मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस तरफ अपना कदम बढ़ाया और आज मैं जहाँ पे भी हूँ वहाँ मेरे साथ मेरे बच्चों की ब्लेसिंग्स हैं और मेरी ईमानदारी और मेरा हार्डवर्क।
1: तो आप अपने आप को एक बिजनेस वुमन मानती हैं या एक एजुकेटर मानती हैं?
0: मैंने कभी, इवन दो हमारा सेंटर है क्वेकरसिल में, उसका नाम है कडल्स प्री स्कूल एंड मॉन्टेसरी, वो बिजनेस में काफ़ी सालों से चला रही हूँ, पर मैंने कभी उसको बिजनेस की दृष्टि से नहीं देखा
1: जी।
0: मैंने उसको हमेशा देखा कि मैं यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है बच्चों के साथ, उनको सिखाने को मिलता है और ये मेरा एक, और उनके साथ एक खूबसूरत रिश्ते बनाने को मिलता है। तो यह मेरा एक पैशन और पर्पज़ है जिसको मैं बहुत खूबसूरती के साथ हर दिन जीती हूँ
1: जी।
0: तो मैंने उसको बिजनेस की दृष्टि से तो कभी देखा ही नहीं है।
1: तो आज भी एंजॉय करती हैं जो आप करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, तो ये ब्लेसिंग है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं और आप वर्क पे जाते हैं और पूरा दिन अगर आप एंजॉय करते हैं अपने वर्क को, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बताइए नैन कि आप रोज़ अलग अलग अलग अलग कल्चर अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों से मिलती हैं, आपके अनुभव में इन बच्चों में आपको कौन सी समानताएं दिखाई देती हैं जो सभी बच्चों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, और क्या कोई ऐसा कल्चरल डिफरेंस है जो आपको ख़ास तौर पर इंटरेस्टिंग लगता है?
0: देखो क्वेकरसिल एरिया में मल्टी कल्चरलिज्म तो है, वहाँ पे सब डिफरेंट कल्चर के बच्चे आते हैं
1: जी।
0: पर बच्चे तो जैसे बोलते हैं कि भगवान का रूप होते हैं, दे जस्ट रिमेंबर ओनली वन लैंग्वेज, लव
1: जी।
0: तो उनको सिर्फ प्यार की एक परिभाषा पता है, बाकी उनको और उनको किसी चीज़ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। बट एज ए एजुकेटर और एज ए इंचार्ज मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत तरह तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूं, हर दिन मीनिंगफुल होना चाहिए बच्चों के लिए कि दे लुक फॉरवर्ड टू कम एट द सेंटर
1: जी।
0: तो मैं मल्टीकल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हूँ। पेरेंट्स सेड भगवान का रूप होते हैं, दे जस्ट रिमेंबर ओनली वन लैंग्वेज, लव
1: जी।
0: तो उनको सिर्फ प्यार की एक परिभाषा पता है, बाकी उनको और उनको किसी चीज़ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। बट एज ए एजुकेटर और एज ए इंचार्ज मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत तरह तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूं, हर दिन

0: करें कि बच्चों का इमोशनल सोशल और कैसे उनको अच्छे से डेवलप करें ना कि वो एक खुश मिजाज बच्चे बने।
1: सबसे बड़ी चीज तो मैंने ये देखी है कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनको काइंड ऑफ डिले दे आर हैविंग बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन टाइम।
0: जी
1: मेरी पेरेंट्स से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आई नो कि अपन सब बिजी हैं पर आप अगर आधा घंटा भी उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो दैट इज मोर देन इनफ। सबको सभी लोग बिजी हैं पर बच्चों के साथ में ये है कि इसकी वजह से जब पेरेंट्स पिकअप करने आते हैं तो वो दे फील गिल्टी। वो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो गिल्ट उनके अंदर होती है कि ये बच्चे को हम इतनी देर छोड़ के गए तो जो चाहिए वो हम दे दो वो बच्चे को।
0: जी
1: वो ठीक नहीं है क्योंकि वो बच्चे उससे इमोशनली आप उसको और वीक करते जा रहे हो।
0: अच्छा
1: तो मेरा ये है कि बच्चों को एक तो टाइम दो, स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, उसकी वजह से उनके डेवलपमेंटल डिले हो रहे हैं। दूसरी बात, हाँ, बच्चों के साथ थोड़ा फर्म होना भी बहुत ज़रूरी है, उनको बताना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या सही क्या गलत है क्योंकि जो वो चाहिए वो हर इच्छा आप उनकी पूरी करते जाओगे
0: जी,
1: सो दे नॉट गोना लर्न एनी थिंग। तो ये चीज़ मैंने देखी है क्योंकि उनका बिहेवियर हमारे साथ अलग होता है।
0: हाँ।
1: जब पेरेंट्स आते हैं उनके साथ अलग होता है क्योंकि पेरेंट्स जो वो कहते हैं वो करने को तैयार रहते हैं ना।
0: हाँ,
1: उस टाइम
0: स्पॉइल
1: कर देते हैं तो वो क्या है कि वो उनके डेवलपमेंटल उसमें डिले बहुत होता है इसकी वजह से बच्चों
0: जी,
1: में
0: जी।
1: तो और स्क्रीन टाइम, ये तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी ऋचा जी और आप भी समय समय पे बताया कीजिए कि प्लीज बच्चों को मोबाइल देना बंद कीजिए।
0: जी
1: पहले स्कूल में हमारे दो बच्चे आते थे जो स्पेशल नीड्स होते थे, अब हर साल स्कूल में मतलब 5 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको किसी न किसी तरह की डिले है।
0: तो ये बताइए कि छोटे बच्चों की शुरुआती वर्ष उनके व्यक्तित्व और भविष्य के विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं? इस उम्र में बच्चों के विकास के किन पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए?
1: देखो, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
0: जी
1: अब ज़्यादातर पेरेंट्स उनके एकेडेमिक उसके ऊपर फोकस करते हैं विच इज़ नॉट राइट। सोशल, इमोशनल और फिजिकल कॉग्निटिव वेलबींग सभी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है।
0: अच्छा।
1: इन सब चीज़ों का जब भी कभी कोई पेरेंट्स एनरोल करने आता है बच्चों को और मेरे से बोलते हैं कि हमारा बच्चा ABCD लिखेगा कि नहीं, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि ये एक पार्ट है बच्चे की लर्निंग का, बट प्लीज़ लेट उसको बच्चे को फोकस करने दो उसके कॉन्फिडेंस पे।
0: अच्छा।
1: हाउ वी ही कैन स्टैंड अप एंड टॉक अमंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, वो बच्चों में बड़ा बच्चे लिख लेते हैं 100 तक।
0: अच्छा।
1: बट जब कभी अपन उनसे बोलो कि तुम खड़े हो के एक पोएम गा दो तो वो पीछे चाके छुप जाएंगे।
0: अच्छा।
1: सो ये भी तो डिले है ना एक तरह का।
0: जी, जी।
1: सो ये मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहती है कि हमसे ये बोलो कि हम हमारे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं
0: जी,
1: अब सिर्फ एकेडेमिक नहीं।
0: अच्छा।
1: जो कि आजकल पेरेंट्स का बहुत ज्यादा फोकस है एकेडेमिक उस पर।
0: जी
1: सो मैं ये चाहूंगी कि
0: तो चलिए श्रोतागण एक ब्रेक लेते हैं और ये चर्चा फिर जारी रखते हैं। धन्यवाद।
2: Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413-385-976.
3: Darpan Hindi Karyakram mein sponsorship ke liye sampark kare phone number 0413-385-976.

0: Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।
2: श्रोताओं उम्मीद है कि आप पहेली में भाग ले रहे हैं। एक्चुअली शुरू कर दिया है आपने भाग लेना, बहुत अच्छा लग रहा है कि सही जवाब आ रहे हैं। अभी तक एक भी गलत जवाब नहीं आया, तो कंपटीशन है। सुनील जी ये भी बता दें कि आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, और कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी। राज गर्ग जी लिखते हैं कि गुड बिगनिंग दर्पण रेडियो, थैंक्स पराग फॉर द रिलीजियस इन्फॉर्मेशन। और जवाब आया है कुछ पहेली का, प्रदीप सिन्हा जी लिखते हैं समाचार मधुर भजन ज्ञान वर्धन साक्षात्कार अति मधुर कार्यक्रम चल रहा है। यतिंदर गुप्ता जी लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग ऑफ शेरावाली। मंजू जी लिखती हैं वेरी नाइस सॉन्ग। राजेश पांडे जी लिखते हैं अतिर मधुर कार्यक्रम चल रहा है। जसप्रीत चोपड़ा जी लिखते हैं थैंक यू फॉर शेयरिंग चित्रगुप्त हिस्ट्री। शैलजा जी लिखती हैं पराग जी का धर्म ज्ञान प्रशंसनीय है, विशेष रूप से शनि देव व माँ काली जिनका प्रचलित रूप सीमित सही है, पराग जी की भक्ति व साधना का अद्भुत पुरस्कार है, उन पर प्रभु व माँ की अदृश्य कृपा। प्रदीप जी लिखते हैं पराग जी की बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा। पराग जी से प्रश्न है कि चित्रगुप्त जी और आकाशिक रिकॉर्ड में कोई कनेक्शन है कि नहीं। हेमलता जी लिखती हैं नमस्ते टू दर्पण रेडियो टीम एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी इंजॉयबल प्रोग्राम, पराग जी गेव वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, वेरी वेरी वेरी गुड सॉन्ग, थैंक्स। अमिता जी लिखती हैं वेरी नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, पराग जी आपका धार्मिक ज्ञान सराहनीय है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्री चित्रगुप्त जी भगवान के बारे में बताने के लिए, थैंक यू ऋचा जी और सुनील जी फॉर ब्यूटीफुल प्रोग्राम। शैलजा जी फिर लिखती हैं पराग जी का समर्पण संतुलित योजना व संकल्प सनातन संस्कृति व धर्म की अनवरत यात्रा में उनका योगदान भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारे अटूट विश्वास का प्रतीक है। पराग जी को शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई भविष्य के बागडोर संभालने के लिए। राम दुबे जी लिखते हैं फीलिंग वेरी स्पिरिचुअल लिसनिंग टू पराग जीज गेट प्रोग्राम, एब्सोल्यूटली कैप्टिवेटिंग। और पहेली का भी आंसर दिया है,
1: वो अभी नहीं बताना है, नहीं, जारी
2: वो
1: है।
2: मैं हाँ जारी है, मैं पढ़ती जा रही हूँ मैसेज। और लीला जी लिखती हैं ऋचा जी महेश भट्ट जी के बारे में आपके शोध को नमन। लीला तिवानी जी ने दुर्गा पूजा में सम्मिलित होकर माता का आशीर्वाद लेना हमारा सौभाग्य रहेगा, लीला जी ने बताया। उसके बाद लीला जी पुनः लिखती हैं नंदन जी आपके विचार बहुत अच्छे लगे। शैलजा जी लिखती हैं नंदन जी का साधुवाद विश्व की आगामी पीढ़ी तैयार करने के लिए। लीला जी पुनः लिखती हैं नंदन जी शिक्षिका के रूप में आपके विचार बिल्कुल हमारे जैसे हैं। अरविंद जी लिखते हैं आज गानों का सिलेक्शन जबरदस्त है, थैंक्स टू सुनील रिचा। हेमलता जी लिखती हैं वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। शैलजा जी लिखती हैं स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग इन द मिडिल चाइल्डहुड रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड इज अ फेमस सेइंग वाइडली शेयर्ड एज अ चाइनीज प्रोवर्ब। Children learn from observation. Yatinder ji likhte hain Nandan ji ki child care business and philosophy can be other center as well. To bahut sare shrota aapke jo hai comments aa rahe hain, sunke acha lag raha hai ki aap bahut dhyan se sun rahe hain aur enjoy kar rahe hain. Chaliye apni charcha ko aage badhate hain aur Bhavna ji se poochte hain sabse ahem sawal. वो सवाल ये है भावना जी कि आपके सेंटर में बच्चों के लर्निंग और डेवलपमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ या टीचिंग मेथड अपनाए जाते हैं, तो ताकि मुझे ये लग रहा है कि जो लोग अदर चाइल्ड केयर सुनते होंगे वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं।
3: ये बहुत अच्छा सवाल है ऋचा जी आपका। मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ विथ फन और मीनिंगफुल होनी चाहिए। हमारा फोकस प्ले बेस्ड लर्निंग पे होता है, बच्चों का इंटरेस्ट और उनकी क्यूरियसिटी और फैमिली इनपुट के आधार पर लर्निंग एक्सपीरियंस में प्लान करती हूँ
2: जी।
3: मेरे लिए सबसे अच्छी टीचिंग वही है जिससे बच्चा सीखते हुए ये भूल जाए कि वह पढ़ रहा है। दूसरा ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट थिंग हम हमारे सेंटर में करते हैं कि एज आई मेंशन कि एवरी सिंगल डे शुड बी मीनिंगफुल, सो डांस क्लासेस भी चलती हैं हमारे सेंटर में। दूसरा आर्ट क्लासेस भी मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ बच्चों के लिए ताकि पेरेंट्स को बहुत सारी जगह नहीं जाना पड़े, ऑल द फैसिलिटीज़ दे कैन गेट इन द वन प्लेस, वो है। और एक हमारा हाईलाइट है कि मैं आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, करती हूँ और कर रही हूँ सिंस 2016। उसका चिल्ड्रंस डायलॉग विथ नेचर, उसमें जो मेरी ग्रैंडमा ने मुझे सिखाया था कि हाउ टू डू आर्ट विथ हल्दी और अपना धनिया पाउडर, बीट रूट का जो जूस है अच्छा। उससे बच्चे नेचुरल चीज़ों से बे लीफ है अच्छा। उनके फ्लावर्स हैं, ऑनियन के पील्स हैं, गार्लिक पील्स हैं अच्छा। उनसे बच्चे कैसे आर्ट बना सकते हैं।
2: तो आप उनको क्रिएटिव बनाने क्रिएटिव के लिए जो है हेल्प करती हैं।
3: हाँ जी हाँ, तो वो बच्चे वो आर्ट बनाते हैं, फिर मैं वो सेंटर में आर्ट एग्जीबिशन लगाती हूँ जिसमें पिछले साल मिशेल रोलैंड भी आई थी
2: अच्छा।
3: और अपने ये ब्लैक टाउन काउंसिल से जो मेयर हैं वो भी आते हैं, दे आल्सो विजिट, और सारी कम्युनिटी जो अराउंड क्वेकर सिल्की है उनको इन्वाइट करती हूँ। तो वो एग्जीबिशन मेरे सेंटर में लगती है, उसके बाद हम ये आर्ट ब्लैक टाउन काउंसिल में प्रेजेंट करते हैं
2: अच्छा।
3: तो वहाँ से भी हमारे बच्चों को हर साल अवार्ड मिलता है।
2: तो बताइए छोटे छोटे बच्चे कितना प्राउड महसूस करते होंगे ना कि दे आर डूइंग ग्रेट जॉब।
3: दे उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है जब वो उस फोटोग्राफ लेते हैं बच्चों के कि ये पेंटिंग जी, मैंने बनाई। फिर जब वो एग्जीबिशन होती है ना तो वो बच्चों से पूछते हैं कि तुमने ये क्या बनाया है
2: जी।
3: तो उनका इमेजिनेशन इतना बढ़िया होता है कि अपन जब देख के दंग रह जाते हैं कि हमारी सोच में और उनकी सोच में कितना हाँ, अंतर होता है।
2: उनका विजन जो
3: उनका विजन टोटली डिफरेंट होता है।
2: बहुत सुंदर बात। तो आप ये बताइए कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है तो उसके बारे में हमें बताइए। इतने 24 साल से आप सेवा दे रही हैं और बच्चों के प्रति समर्पित हैं, तो ये किस तरह का आपको अवार्ड मिला और कब मिला?
3: ये तो बहुत खुशी लगती है ऋचा जी जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ। ये अवार्ड हमको 2024 से मिल रहा है।
2: अच्छा, लगातार
3: मिल रहा है
2: जी,
3: 2024 में हमारी टीम के साथ जब हम गए थे वहाँ प्रेजेंट करने तो बेस्ट ड्रेस का अवार्ड मिला था
2: अच्छा।
3: उसकी थीम थी इवनिंग इन पेरिस
2: अच्छा।
3: और सेकेंड टाइम जब हम गए तो हमारा नॉमिनेशंस में भी 21 एरियाज में था
2: अच्छा।
3: आई फील सो प्राउड।
2: क्या नाम है इस अवार्ड का, कौन देता है?
3: एक्सीलेंस इन अर्ली चाइल्डहुड अवार्ड। ये कंपटीशन सिर्फ सिडनी का नहीं है, इट वाज अमंग NSW न्यू साउथ वेल्स का था। तो उसमें सब वो किसी को पता ही नहीं था कि क्वेकर सिल कहाँ है, देवर आस्किंग मी कि वेयर इज क्वेकर सिल। तब फिर मैं उनको कैसे बताऊँ कि क्वेकर सिल कहाँ है, क्योंकि उनको तो ब्लैक टाउन भी नहीं पता है कि कहाँ है ब्लैक टाउन।
2: और ब्लैक टाउन के पास वेल्स में तो एक छोटी सी जगह है।
3: तो वो क्या था कि जब हमारे सेंटर का नाम इतनी बार डिस्प्ले हुआ विद द फोटोज, बहुत प्राउड मूवमेंट था। और उसके जब फिर नेक्स्ट
2: सबसे पहला विचार आपके मन में क्या आया जब अवार्ड में?
3: पहला विचार ये
2: खुशी मिलती है कि देखिए इतनी मेहनत,
3: इतनी खुशी कि मैं
2: आपको श्रोताओं में बता दूं, मैं इनका फॉलो करती हूं नयन जी को। इतना सुंदर इनका चाइल्ड केयर, अगर बसंत पंचमी है तो पूरा आपको पूरे पीला ही दिखेगा पूरा इनका चाइल्ड केयर सेंटर। बहुत मेहनत करती हैं और मुझे लगता है कि यही वजह है कि इनका जो सेंटर है वो अन्य सेंटर से बिल्कुल अलग है और बच्चे बहुत खुश रहते हैं आपके सेंटर में, जो हाँ, मुझे देखने से लगता है
3: बहुत खुश रहते हैं बच्चे। और बड़ी खुशी होती है जब वो पेरेंट्स पिकअप करने आते हैं और जब मैं उनके हंसता हुआ बच्चा उनको हैंडओवर करती हूँ, तब मैं हमेशा कहती हूँ कि थैंक्स गॉड आज का दिन मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया
2: जी,
3: कि
2: तो मैंने, फिर अब अवार्ड पे आते हैं
3: फिर हाँ। तो वो अवार्ड में फिर सेकेंड टाइम उनकी थीम थी एनचेंटेड गार्डन।
2: अच्छा।
3: तो हम सबको उस हिसाब से ड्रेसअप करके जाना था
2: जी जी।
3: तो उसमें जो मल्टीकल्चरल प्रोग्राम मैं सेलिब्रेट करती हूँ सेंटर में, उसके लिए हमको मिला था वो अवार्ड। तो वो भी मे बी नॉमिनेशंस मोर देन 25 थे, हमको नहीं पता था कि हमको अवार्ड मिलेगा कि नहीं, ये तो तभी पता चलता है जब आप प्रेजेंट हो, अनाउंस होता है तब। तो नॉमिनेशंस में तो हमारे नाम अनाउंस हुए ही इतनी बार, पर फिर जब अवार्ड मिला तो इट वॉज बहुत प्राउड मोमेंट था, इतने लोगों के सामने, सारे मिनिस्टर्स थे वहाँ पे, हाँ, और उनकी पूरी पैनल थी जिन्होंने बोला, फिर वहाँ पे जो स्पीच दिया, वो स्पीच कि आप क्या करते हो बच्चों के साथ में, हाउ, और जो जो एक्टिविटीज हमने की थी उनके क्राइटेरियाज बहुत टफ होते हैं, दे वोंट गिव यू अवार्ड, उनका ईच सेक्शन में आपको अप्लाई करना हो तो 4,500 वर्ड्स लिखना है एक क्वेश्चन का आंसर, तो 6 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं
2: जी,
3: तो
2: जी।
3: मेरी पूरी एक महीने की मेहनत थी ऋचा जी,
2: बिल्कुल
3: 1 month 8 hours,
2: बिल्कुल
3: उसके
2: बिल्कुल।
3: बाद फिर थैंक्स गॉड कि,
2: तो ये तो पुरस्कार के पीछे देखिए आपकी व्यक्तिगत मेहनत तो है ही, आपकी पूरी टीम की भी मेहनत है, लेकिन परिवार का क्या योगदान है ये बताइए, कैसे घर और सेंटर में आप बैलेंस करती हैं?
3: परिवार का योगदान ऐसा है कि मेरे विदाउट टीम तो आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, पूरा टीम वर्क इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, पर इसमें वही है ना कि अपनी व्यक्तिगत मेहनत के साथ टीम का योगदान भी मैं इसमें बहुत ज़रूरी है, और इस जर्नी में मेरे परिवार ने साथ दिया, मेरी एक ही बेटी है जो ऑलरेडी मैरिड, तो अब मेरे पास बहुत टाइम ही टाइम है
2: जी
3: है ना। और जहाँ तक मेरे परिवार की और बात करूँ तो मेरे पिताजी का एक शिक्षक थे, उन्होंने मुझे शिक्षा, मेहनत और अपने काम के प्रति ईमानदारी और समर्पण के जो संस्कार दिए वो आज भी मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मेरे भाइयों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उपलब्धियां हासिल की, हाल ही में मेरे बड़े भाई साहब को हिंदी साहित्य में अपने योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया, जो हमारे पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है
2: जी।
3: मुझे जब मैं अपने परिवार की उपलब्धियों की तरफ देखती हूँ, मुझे महसूस होता है शिक्षा, ज्ञान और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की भावना हमारे संस्कारों का हिस्सा रही है। जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तब पता नहीं था कि कौन सी किस रास्ते पे जाना है
2: जी।
3: क्या बनना है, बहुत सारी चुनौतियाँ थी, पर अपने संस्कार और जो अपनी परवरिश है वो कहीं ना कहीं अपने को गाइड करते ही हैं
2: जी।
3: और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ इस मुकाम पे पहुँची हूँ, और थैंक्स टू गॉड।
2: बहुत आपको बहुत बहुत बधाई इतने प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए, और आप लगातार ले रहे हो तो ये और भी आपको गौरवान्वित करता होगा। ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मल्टीकल्चरल समाज में अलग अलग संस्कृतियों और बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के साथ काम करना अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव है। आप अपने सेंटर में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को किस तरह से बढ़ावा देती हैं?
3: वही एज़ मैंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सारे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती हूँ, जैसे अभी लास्ट वीक हमने जो नेपाल के बारे में बताया, जो नेपाल में अभी इतना फ्लडिंग हुई, सो उनमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं और वो क्यों हुई
2: जी,
3: उसके बारे में बच्चों से बातचीत की कि हमें फ्यूचर के लिए अपनी अर्थ की कैसी देखभाल करनी है
2: जी।
3: फिर उसके हमने श्रीलंका का कल्चर प्रेजेंट किया, क्योंकि हमारी एक टीचर शी इज़ फ्रॉम श्रीलंका, तो वो पूरा श्रीलंकन कॉस्ट्यूम पहन के आई थी
2: जी, जी।
3: फिर उसने सारा बुद्धिज्म के ऊपर बात की, मेडिटेशन बताया बच्चों को कि मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदा होता है। अभी जैसे नवरात्रि आएगी तो मैं सारी मम्मी लोगों को ड्रेस कोड फिक्स कर देती हूँ कि सब लोग रेड लहंगा पहन के आना। फिर जो गुजराती कम्युनिटी है वो डांडिया ऑर्गेनाइज करती है, तो सारे बच्चे फिर डिफरेंट कॉस्ट्यूम में आते हैं और उनका खाना।
2: आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि काश हम भी अगर बच्चे होते
3: बिल्कुल और यू मोस्ट वेलकम ऋचा जी, एक बार सेंटर में
2: जरूर आएंगे
3: तो
2: बिल्कुल, हमारी दर्पण टीप पधारेगी और आपके रंग बिरंगे जो है ना सेंटर को एंजॉय करेगी।
3: और एक और चीज कहना चाहूंगी कि बच्चे छोटे होते हैं नेपी पहन के आते हैं
2: जी,
3: बोलना नहीं जानते
2: जी,
3: और जब मैं उनको स्कूल भेजती हूँ दे बिकम कॉन्फिडेंट लर्नर।
2: Wow.
3: तो और उसके बाद कई बार बच्चे ऐसे आते हैं जो यूनिवर्सिटी में हैं और सम ऑफ देम आर वर्किंग, मैं उनको पहचान भी नहीं पाती
2: जी।
3: और वो स्कूल में आके कहते हैं कि मिस ने डिड यू रिकॉग्नाइज मी,
2: वो
3: अभी भी आते हैं हाँ मेरे से मिलने आते हैं। फिर मैं कहती हूँ
2: बड़ी उपलब्धि है ना, सबसे बड़ी कमाई यही कमाई है कि आपको जो है हमेशा कोई इंसान याद रखे,
3: तो वो कहते हैं कि हमारी जर्नी यहीं से शुरू हुई
2: जी। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, माता पिता के लिए भी टिप्स आपने दिए, अंत में भावना जी हमारे श्रोताओं को अपने छोटे बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड सेंटर चुन रहे उन सेंटर उन्हें सेंटर चुनने समय किस महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें माता पिता को
3: तो मैंने जैसे पहले बताया कि सबसे पहले तो रेटिंग देखें सेंटर की रेटिंग क्या है एजुकेटर्स की क्वालिफिकेशंस कैसी है बच्चों का जो एनवायरनमेंट है जो बच्चे कैसे हैं वहाँ पे ओरिएंटेशन होता है उसमें ओरिएंटेशन में आके पार्टिसिपेट करें बच्चे को लेके आएं तो वो माँ एक ऐसी चीज़ बनाई है भगवान ने कि वो आके उसका दिल बता देता है कि दिस इज़ द प्लेस फॉर माई चाइल्ड तो मैं यही कहती हूँ कि माँ से कि ठीक है आप सारी चीज़ें देखो बट जहाँ आपका दिल बोले वहाँ भेजो जस्ट ऐसे मत देखिए कि ये सेंटर बहुत सुंदर है तो चलो मैं यहीं अपने बच्चे को भेज देती हूँ बच्चे का खुश और उनकी सेफ्टी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है और उनको भी सेफ और सिक्योर फील करना चाहिए बच्चे को और उनकी जहाँ पे वो सिक्योरिटी उनको जब फील होने लगती है वो बिलोंगिंग्स की फीलिंग उनमें आने लगती है तो फिर उनका डेवलपमेंट फैंटास्टिक वे में होता है
2: बहुत सुंदर बात बहुत बहुत धन्यवाद और आगे कोई सपना है आपका या कोई फ्यूचर प्लान है
3: यस ऋचा जी जहाँ तक मेरे सपने की बात है मैं सोचती हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में भी इसी पैशन और इसी डेडिकेशन के साथ मैं अर्ली चाइल्डहुड में काम करना चाहूँगी उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो एक ज़िंदगी में एक ही काम करना चाहते हैं कि मुझे ये बनना है पर मुझे मैं इस छोटी सी ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहती हूँ तो वो सब कुछ मतलब वो मेरा सब कुछ रिलेटेड बच्चों से रिलेटेड ही होगा कि उनके डेवलपमेंट के लिए मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ और मेरे सेंटर को कैसे रिकग्निशन मिल सकती है कभी अपने जीवन में कुछ भी करना है तो हार नहीं माननी है उसके लिए और छोटे छोटे जो जीवन हैं वो एक खूबसूरत याद उनको अपने दिल में बनाना चाहती हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनके मन में मेरी याद रहे है ना और मैंने अपने काम को सिर्फ एक नौकरी की तरह तो कभी किया ही नहीं है उसको जिया है मैंने हर दिन और फिर मेरी जर्नी की सबसे बड़ी खूबसूरत ये बात है कि 24 साल के बाद भी मेरे बच्चे मुझसे मिलने आते हैं और भगवान ने चाहा तो मैं कभी हार नहीं मानूंगी जैसे कहते हैं ना जीत उन्हीं की हुई है जो हार से जी भर कर लड़े हैं हार के भय से डरे वो धाराशाही खड़े हैं हर विजय संकल्प के पद पूछती देखी गई है वही किनारे बचे हैं जो सिंधु को बांधे खड़े हैं
2: वाह वाह वाह कितनी सुंदर के बात सुंदर बात से आपने ये चर्चा ख़त्म की है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी कि आप आई और हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया और ऐसे ही आगे भी आप माता पिता को भी ज्ञान देते रहिए बच्चों को तो ज्ञान दे ही रही हैं लेकिन उन्हें भी जो है ना अच्छी बातें बताती रहिए ताकि वो अच्छे से बच्चों को पाल सकें और शिक्षा दे सकें
3: थैंक यू ऋचा जी
2: धन्यवाद
3: थैंक यू सुनील जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आई होप आई विल कम अगेन
2: बिल्कुल जुड़े रहिए

0: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: श्रोताओं, ये हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश है और अभी जब हम लोग पहेली का बहुत सारे हमारे पास उत्तर आए और थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पहेली और बहुत सारे लोग थे तो हम लोगों ने लॉटरी पे दो लोगों का नाम चूज किया है
2: और सबने सही जवाब दिया कि गणेश जी का प्रिय मिष्ठान जो है मोदक।
1: हाँ, तो सभी लोगों का सही उत्तर था और जो है हम चेतन शाह को बधाई हो, आपको मिलता है जो ड्रामा नीडा का जो है दशा का जो है और हम आपको सूचित करेंगे और हेमलता को मिलता है कुटुंब का टिकट
2: दो फ्री टिकट कुटुंब उत्सव का
1: तो हम आपको सूचित करेंगे कि कैसे आपको टिकट लेना है
2: जी बहुत बहुत बधाई आपको और सभी को धन्यवाद भाग लेने के लिए तो श्रोताओं की उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा महेश भट्ट के गीत भी आपको पसंद आए होंगे महेश भट्ट की कहानी सिर्फ एक फिल्म मेकर की कहानी नहीं है ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी कमज़ोरियों को छिपाया नहीं उन्हें अपनी ताकत बना लिया तो उन्हें उनके जन्मदिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई दर्पण परिवार की ओर से हमें ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे और हमें अपनी टिप्पणियां भेजते रहिए ताकि हमें बेहतर प्रोग्राम बनाने में सुविधा मिले और बेहतर प्रोग्राम आपको दे सकें नमस्कार धन्यवाद अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी
3: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
4: आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au